0: किशन निधि विनियामक और VFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की, तो बहुत खास होता है ये। पूर्णता, परोपकार, आध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है उसका जो रेडियो डिवीजन है वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
3: अपनी स्वागतो क्या बोलते हैं आप बताएं?
4: सुस्वागतम, अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआइट।
3: ओ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी, धन्यवाद।
3: आपके करियर से शुरुआत करते हैं
4: जी।
3: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थी, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
4: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था, क्योंकि वहाँ पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
3: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आ

0: कर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
1: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा. मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युववाणी में एग्ज़ाम दिया था,
0: वाओ,
1: एंड आई गॉट
0: सरप्राइज.
1: थ्रू इट. तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया, और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज
0: क्या
1: एन
0: बात है,
1: इंजीनियर.
0: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है. आई एम श्योर
1: जी,
0: आपने शायद बताया कि 33 सालों तक
1: तैंतीस
0: आपने
1: साल
0: काम
1: जी.
0: किया, 3 दशक से भी ज्यादा. क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
1: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफ़र पूरा अपनी आँखों से देखा है
0: बिल्कुल
1: अपनी सर्विस के दौरान,
0: जी,
1: और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नज़दीकी से.
0: डेफिनेटली.
1: एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना, AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है. लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास,
0: जी
1: AIR वाज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो ऑन इंटरनेट की शुरुआत की थी. और
0: क्या
1: वहाँ पे
0: बात
1: हम लोग के पास इतने प्रोग्राम, मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी. तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ.
0: जी
1: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है. और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड,
0: जी
1: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके.
0: बिल्कुल. डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
1: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए होता है,
0: जी
1: और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी भी है एक प्रोग्रेस के लिए. तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है. मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे. आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है, उसके बाद गाड़ी चलाता है. तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज़ करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी
0: हमें बैलेंस
1: डिपेंडेंसी नहीं
0: बनाना
1: हो.
0: आना
1: हाँ
0: चाहिए
1: जी,
0: दोनों
1: हाँ
0: के
1: जी
0: बीच में. बिल्कुल.
1: जी
0: अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो. अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं. रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता है, क्या खास डिफरेंस है और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
1: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें
0: जी, उस
1: तो
0: पर भी आएंगे हम आगे.
1: हाँ, वो तो
0: बिल्कुल.
1: फ़र्क, बहुत फ़र्क है. लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज़्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है. लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म, या आप कह सकते हैं कि
0: जादुई दुनिया.
1: एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज़ सुन रहे हैं, यू यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन
0: बिल्कुल
1: बिहाइंड दैट.
0: बिल्कुल.
1: आई फील दैट वे AIR हैज़ द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
0: राइट राइट.
1: जी
0: अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुंचेगा, या क्या AI का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविजन के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीजें हो रही हैं?
1: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है. लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल
0: जी
1: इंटेलिजेंस विच इज़ अ ह्यूमन एसेट. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है, आप लोग के प्रोग्राम

0: स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम यूपीएससी. तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का ज़माना देखिए, इट इज़ नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे. वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे.
1: जी.
0: लेकिन और एक चीज़ और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है,
1: जी, मैं वही बात कर रही हूँ
0: वो
1: कि
0: बहुत
1: ग्रामीण
0: ज़रूरी
1: इलाकों में, रूरल एरियाज़ में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते
0: है.
1: भी नहीं
0: जी
1: हैं, और उनको अक्सर ठगा जाता है,
0: बिल्कुल
1: ये होता
0: बिल्कुल
1: है. तो ये नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल, ये बहुत
1: चलिए,
0: डेंजरस है.
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ आरजे को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम कर रही
0: जी
1: है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है. किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है,
1: जी.
0: जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातें या देख सकते हैं. तो उसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी. पहली बात तो हम आप जहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है. तो ये एक, यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए. एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं,
1: ओके, तो
0: जो
1: क्या
0: आप
1: क्वालिटी
0: माइक्रोफोन से.
1: में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स. से डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर,
1: राइट
0: कि
1: राइट,
0: आपने कहीं पे गलत बोल दिया या
1: वेरी
0: आपकी
1: ट्रू.
0: आवाज़ में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में AI और प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है. और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और
0: जी
1: बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है. ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छे इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. अभी इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं, तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
0: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय, जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीज़ों को करना मुश्किल होता है
1: जी
0: प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीज़ें पहले शायद, वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीज़ें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीज़ें आज के डेट में स्वाभाविक हैं. तो आप अगर उसको कुछ चीज़ें कर्टेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे. तो वो तो एक कहीं पे है. और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो
1: जी, बिल्कुल
0: तो कठिन है, यस.
1: राइट.
0: लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है. इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो.
1: बिल्कुल
0: प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है. और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेंजी भी सुनती. मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दर्ज

0: ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट. तो मुझे लगता है वहाँ पे एआईआर का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
1: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
0: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस. और शुरू शुरू में मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लासफिन सर्विस में, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है. तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा. तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन, यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू दिस सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स.
1: ओह माय गॉड.
0: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे. तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड, लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल. तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद.
1: आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात में आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
0: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, मे बी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक. उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वे थे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वे बॉयज. एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है. उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड. तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया, लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई. तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे, तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी. शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द एआईआर इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती. एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं आई विल उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, माई फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड, वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई ज्वाइनिंग टू एआईआर इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी, यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people. और वो बात मैंने गांठ बांध ली.
1: That is quite a support.
0: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती.
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
0: देखिए, बहुत सारे इंसिडेंट आज के ज़माने में फ़नी लगती हैं, लेकिन उस समय तो जान पे आई रहती है. एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट, हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफ़ी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए, आज के ज़माने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था, दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन, और बेबी इट विल गो टू योर सीआर आल्सो.
1: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे.
0: तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे रात के टाइम में, करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का, बाहर एक ऑडिटोरियम में सारे लोग बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा.

0: बिल्कुल, बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सो उस समय जान सांसद में आई होती
1: सो
0: है.
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम
0: यस, इट वॉज ड्यूरिंग, यस,
1: 90 ईयर्स हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं,
0: जी
1: होने वाले हैं
0: जी
1: जल्दी ही. तो इन 90 ईयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है.
1: जी,
0: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है. और आज के डेट में जहाँ पे कम्युनिकेशन आज बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: एक सवाल मेरा और है आपसे यहाँ पर. जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास्कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर?
0: अगर सच बताऊँ, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है.
1: बिल्कुल.
0: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज, इलाहाबाद, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन दे.
1: ट्रू,
0: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
1: नेचर से जुड़े हुए हैं.
0: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल. तो और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माई इन लॉज देवर इन टू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
1: रमता गया
0: आप जानते गए. प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है,
1: मल्टीटास्क. मैं वही आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार. तो वो सारी चीजें, मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
0: नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज. तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया. हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है. तो माई बॉस टॉट मी, और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है और कच्ची ईंटें होती है वो नहीं लगनी चाहिए.
1: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है, ऑल्दो डांटना वाज वेरी गुड, थोड़ा हम
0: बहुत
1: चीजें सीख लेते थे वो अच्छी बात थी, थोड़ा डर होना जरूरी है. बिल्कुल. अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, मैं एक चीज और पूछ लूं फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है.
0: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला. तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना पड़ता था।
1: मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ

0: पर बताइए प्लीज।
1: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल
0: अलर्ट।
1: और अलर्ट ऑल्सो। जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था, एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीज़ें ऑन होती हैं। और उसी तरह से तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया। तो उनका गुस्सा भी वाजिब है,
0: जी
1: हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन
0: थोड़ा
1: सारे
0: सा
1: सिस्टम को ऑन
0: गैप
1: होने
0: तो
1: में देर
0: होगा
1: वुड बी अ
0: जी।
1: डीले, तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, ये
0: बिल्कुल,
1: इनेविटेबल है।
0: हमारे पास अभी समय की कमी है तो
1: जी
0: हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है। हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मल्लिका हैं और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड हैं, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए।
1: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है। एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: क्या बात है
1: क्या
0: आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया। ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने हैं।
1: ये कुछ ज्यादा नहीं
0: हो गया। थैंक यू सो मच।
1: कोई चलिए, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
0: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार। निक्षय

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।